उस हरी ने बाकी इंसाना नु भी पैदा किया है। तुहाडे विच भी हरी, उन्हां विच भी हरी, फिर क्यों जुलम करदे? ए उपदेश सुनिया उन आदमखोरा ने नामदेव दे चरणा

पर मैनू ते राम दे बराबर ही सुनना चाहिए। जे दे सकदे हो तां जरूर दे। सेठ हंकार विच हसे है, तकड़ी मंगाई, तकड़ी दे एक पासे वो पत्ता पे है तुलसीदास जी दे उत्ते राम लिखे है। ते सेठ ने हसदिया होया।

उस वक्त इस शब्द का उपदेश नामदेव जी ने किया। उन्हां लोगों नूं उपदेश जिहड़े कर्म कांड करदे ने पर मन विच परमेश्वर का प्यार नहीं।

अगर कोई बनारस जाके तप करे उल्टा लटके तीर्थां ते जाके मरे अग्नि विच अपना शरीर

हजारा गौवा कोई दान करे, कोट जो तीर्थ करे, तन जो ही वाले गारे। कोट कहते हैं करोड़, करोड़ा कोई तीर्था से जावे, तन जो ही वाले गारे, तन के शरीर में अगर कोई अपने शरीर में

की पावन पवित्र शब्द साहिब श्री गुरु नानक पातशाह का उच्चारण किया। जिस शब्द अंदर सतगुरु गुरु नानक पातशाह सानू कलयुग जीवन उपदेश देंदे हुए एक गल समझांदे, असी चंगे क्यों नहीं। कदी किसे मनुख ने अपने आप नूं भी माड़ा आखे, वो ते कहिंदा मेरे वर्गा चंगा है ही कोई नहीं, जिन्ना मैं सियाणा, जिन्ना मैं सुगड़, जिन्ना मैं गुणवान, जिन्ना मैं ज्ञानी, मेरे वर्गा कोई संसार विच नहीं है। पर साहिब कहिंदे ने भाई चंगा किसे चंगयाई नाल हुंदा है, शुभ गुणा दे नाल हुंदा है। अपने आप चंगे बन बहना उसनू चंगा नहीं आखदे। इधर पट बाणी विच कहिंदे ने चंगे किवें हो सकने आ जे साडे अंदर मालक दी समझ मुताबक गुण होण। ते जे हे परमात्मा तेरे शुभ गुण साडे अंदर एक भी नहीं, असी अपने आप नूं चंगे किवें खवा सकने। पट तां ऐसा कहिंदा।

मैं ते अवगुणा दा भरिया होया, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, क्योंकि चंगा ते मैं गुण नाल होना है ना। पर जे मेरे अंदर एक भी गुण ना होवे ते मैं चंगा किवें हो सकदा।

सब तो वड्डा अवगुण की है कि मैं अमृत नूं छड्ड के बिख खाई जा रहा। हे परमात्मा, जो तू अमृत दी दाद दित्ती मैं वह भी हासिल नहीं कीती, ते केवल बिख चखी जा रहा। एदू वड्डा होर अवगुण केड़ा हो सकता।

कंचन नारी में जियो लोबत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर वो गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जरा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना ते नारी कहिंदे ने इस्त्री। बस इना विषय विकारां विच पै के मोह दे जंजाल विच फस के माया दे मिठे रस चख के हे परमात्मा सी तेनू पलाया होया।

सिमरन ए दो पंख ने, जद तक ए दोवे पंख ना होन तद तक परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। जिवें पंछी दे दो पर हन, दो पंख हन, दो पंख होन उड़ारी मार के किते भी जा सकदा है, हे गुरसिख सेवा ते सिमरन दो पंख हन, जिन्हां नूं ए दो पंख मिल जाण ओ उड़ारी ला के किते भी जा सकदे, उच्च अवस्था ते पहुंचिया जा सकदा है, पर जद तक सेवा ते सिमरन ना होवे तद तक कुछ नहीं हो सकता। ना महरूप ना बंके नैना, हुण बंके नैना दा भाव की है? साहब कहिंदे ने हे मनुख इंसान, मैं तेनू नैन दिते सन के तू परमात्मा नू वेखी, पर तू ते पर तरिया रूप ते पराया धनी वेखी जाना है। तेनू मैं नेत्र किस लई दिते सन? दोए दोए लोचन पेखा हौ हर बिन अवर न देख, नैन रहे रंग राई अब बेगल कहना जाए। ये नैन मिले सन परमात्मा नू वेखण वास्ते, पर इन्हां नैना ने बुरियाई तकी है। जदों तकिया बुरा तकिया है, इन्हीं कोशिश की थी, ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम में जोत तारी हार बिन अवर ना देख। तू वेख पर जिस वेले भी वेख हरी दा रूप वेख, ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग। हुण कुल कहिंदे ने जात नू, कुल किदी उच्ची है? ना कुल ढंग ना मीठे बैना, मैं हुणे जिक्र कर रहा सा, कुल उच्ची उन्हां दी जिहड़े सिमरन करदे, जिहड़े बंदगी करदे ने, जिहड़े सेवा करदे ने। ते हे परमात्मा मैनूं ढंग भी चंगा ना मिलिया, क्योंकि कोई ना कोई ते ढंग होना चाहिए कि परमात्मा सानू आप बुलाण लग पवे। ना मीठे बहना, हे परमात्मा मेरे बोल भी चंगे नहीं। जप जी साहब पढ़न वालियां नूं पता है, वो जानते ने कि गुरु पातशाह ने एक गल बड़े कमाल दी कही है, कहिंदे ने परमात्मा मोह के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार। हे परमात्मा वो बोल केड़े ने? वो बोल मैनू भी दे, मैं ओही बोल बोलना चाहना जेड़े बोल सुन के तू साडे नाल प्यार करे। मैं पिछे जा जिक्र कीता सी कि बोल एक ऐसी चीज है, एक बोल बोलिया कईयां दा मन टुट जांदा है, एक बोल बोलिया कई गुरु नाल जुड़ जांदे। फिर इसलिए हे मनुख बोल, ओ बोल जिदे नाल तेरा प्यार परमात्मा नाल जुड़े, बल्कि तू परमात्मा नालों टुट ना जाए। मोह के बोलन बोली, आपा कदी पुछ कीती है बोल केड़े ने? जेड़े बोल सुन के परमात्मा साडे नाल प्यार करन लग पवे। इसलिए सतगुरु कहिंदे ने असी चंगे नहीं, क्योंकि कोई भी काम असी मालक दी मर्जी नाल नहीं करदे, असी जो कुछ करने अपनी मर्जी नाल ही करी जाने, जो साडे मन च आउंदा असी करी जा रहे हैं। कदी परमात्मा नूं असी नहीं पुछिया, हे परमात्मा तेनू चंगा की लगता है? जिवें तू कवे मैं उवें बोलां, जिवें तू रखे मैं उवें रवां, जिवें तू चलावे मैं उवें चलां, जिवें तू आखे मैं उवें करां। फिर ते असीं कह सकने आ कि परमात्मा साडे ते मेहरबान है। पर जे परमात्मा दी गल ही नहीं मननी ते परमात्मा खुश किवें होवेगा? आओ आपां ख्याल कर रहे हां असीं चंगे क्यों नहीं, क्योंकि जिस वेले मनुख इस ख्याल ते पहुंच जांदा है उहनूं कुछ ना कुछ मिलदा है। ते जदों ओ इस अवस्था ते होवे कि मेरे नालों चंगा केड़ा हो सकदा है, ते फिर भाई गल नहीं बनदी। मैनूं ख्याल चेते आया तुहाडी झोली पावां, कहिंदे ने एक दफा एक बजुर्ग एक नगर दे बाहर दी लंघ रहा सी, ते पिछों आवाज पई। आवाज मारन वाला एक नौजवान सी, उसने आवाज मार के आखिया ओ बाबा जरा रुक। बाबा जी रुक गए। जिस वेले वो बाबा जी रुक गए कोल आया, ते बाबा जी ने बड़े प्यार नाल बोल के आखिया हां भाई दस तू मैनू रुकाया है, ते आवाज मारी है की कम है? कह लगा बाबा मैनू ए दस ए जिहड़ा नगर है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ

हो जाए ने के हो जाए ने लोग कहिंदा है इहदे विच रहण वाले लोग के हो जाए ने। मैं तेनू ए दसा पहले तू दस जिथो तू आए उथों दे लोग के हो जाए सन उथों दे लोग के हो जाए ने। कह लगा जिथों मैं आया उथे बड़े माड़े लोग रहिंदे बहुत माड़े इसलिए मैं वो नगर छड़ के इस नगर विच आया हुण दसो इथों दे लोग के हो जाए ने। बाबे ने जवाब दिता भाई वापस चला जा इथों दे लोग उदू भी माड़े वापस चला जा। साध संगत इसे तरह एक होर प्राणी ने आके आवाज मारी हुण आवाज दे विच वेखो अंतर किन्ना है। आवाज मारदे आख्या बाबा जी मेरी गल सुन जा। जिस वेले ऐसी मिठी मधुर आवाज बाबे ने सुनी बाबा रुक गया। हां पुरशा दस किवें आया ते किवें बुलाया ही। कह लगा बाबा जी मैं एक गल तुहाडे कोल पुछना चाहना मैनू तुसी दसोगे। कहन लगे हां जरूर दसांगा पुछ की पुछना है। कहन लगा बाबा जी मैं ए पुछना चाहना इस नगर दे लोग कैसे ने इस नगर दे लोग किहो जाए ने। हुण बाबा जी ने जवाब दिता कहन लगे पुरखा पहले तू दस जिथो तू आए उथों दे लोग किहो जाए सन जिहड़ा नगर तू छड्डे है उथों दे लोग किहो जाए सन। ऐ कहन लगा बाबा जी पुछो कुछ दा जिथों मैं आया उथों दे लोग इन्ने भले सन इन्ने चंगे सन मन नहीं सी करदा मैं उथों आवां पर बदकिस्मती जे मैं आ गया पर मेरा मन यही करदा है जे फिर किते समा मिलिया रवांगा मैं उसे नगर विच होर नहीं किते रहना उथे ही रवांगा। पर तुसी मैनू दसो इथों दे लोग किहो जाए ने। हुण बाबा जी ने जवाब दिता भले पुरखा जिथे तू आया इथों दे लोग बड़े ही चंगे बड़े भले पुरश ने तेनू बड़ा प्यार देंगे। कहन लगा मेरा जीवन सफला हो गया। हुण तुसी हैरान होवोगे कि ओही बाबा इस नगर नू माड़ा आख रहा है ओही बाबा इस नगर नू चंगा आख रहा है इहदे विच राज की है। क्योंकि बुरियाई चंगियाई साडे अंदर है ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਰਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। साध संगत जिस वेले सेवा तो खुश होके गुरु नानक पातशाह जी ने अज उन्होंने की आख्या कह लगे उजड़ जा। साध संगत जो बाबा जी अगे गए ते कई ऐसे लोग सन जिन्हां पत्थर भी मारे बुरा भला भी आख्या। सतगुरु गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई तुसी वस दे रहो। भाई साहब भाई मरदाना जी कह लगे बाबा जी मैनू एक गल ता दसो जिन्ना तुहाडी सेवा कीती तुहानू इतना मान सत्कार नाल पूजिया उन्हां नू कहिंदे हो उजड़ जाओ ते जिहड़े पत्थर मारदे ने उन्हां नू कहिंदे हो वस दे रहो इह रमज की होई। कह लगे भाई मरदानिया तू ते कीर्तनी है तेनू ते चंगी तरह पता है फिर क्यों सवाल कीता ही। कह लगे नहीं बाबा जी मैं तुहाडे मुंह सुनना चाहना तुसी मैनू दसो कि इहदे विच राज की है। कह लगे भलिया पुरशा जिन्ना सेवा कीती उन्हां नू आख्या उजड़ जाओ इसलिए आख्या ओ जिथे जाणगे उथे सेवा पंथी पैदा करनगे उथे सेवा करन वाले अपने नाल लाणगे ते जिथे जाणगे उथे सेवा दी आदत पाणगे ते जिन्ना मारे ने पत्थर उन्हां नू आख्या वस दे रहो इसलिए आख्या ए जिथे जाणगे उथे अपने वर्गे बुरे पैदा करनगे ए इत्थे ही वसदे चंगे इत्थे ही रहण ए बुरियाई इत्थे ही टक्की रहनी चाहीदी है।
ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਖੁਦ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈ ਭਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਿਆਈ ਭਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਸ ਇਸੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਟਾਇਆ।

हे माधो माया दे मालिक, माया दे साई, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे। सत्संग तुम ध्यान देना हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे आ, सतगुर कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंड।

चंगे, हम पापी तुम पाप खंडो। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं, क्योंकि असी पाप करन वाले हां, तुसी पापां दा खंडन नाश करन वाले, किवें चंगे हो? हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना, निको ठाकर देसा सामने नालों चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा दा भी नाश करी जाना है। हम ऐसे तू ऐसा, आओगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथा है, बाणी बड़ी अथा है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे, जे कते मन च वस जाए जीवन बदल जाता है, जीवन पलट जाता है। हुण सतगुरु ख्याल

0: हम अवगुण तुम उपकारी।
1: मैं अवगुण हारा ते आप उपकारी हो।
0: मैं अवगुण करी जाना आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे।
1: ख्याल करना परमात्मा अवगुण बख्शदे हन।
0: एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी,
1: कहिंदे ने हे परमात्मा तो किन्ना दयालु है,

नखंडस अवगुण मेरा। हे रमैया मैं तेरा बालक हां, काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकदा है, भगत ही कह सकदा है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा दी याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल इह कह सके कि मैं तेरा बालक हां, ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे कोल अवगुण बख्शा लैने। इसलिए भाई आओ आपां उस मालक अगे इस तरह बेनती करिए, गोविंद हम ऐसे अपराधी, गोविंद हम ऐसे

गोविंद हम ऐसे अपराधी। हे गोविंद असी किहो जे अपराधी हां, असी किहो जे हां, आप किहो जे हो। जे ता समुंद

कैसा अपराध है। रात पैंदी है सौ जाने है, दिन चढ़दे उठ के कमां कारण तुर पैने है, ते परमात्मा दा नाम कदों जपांगे। रात जो सोवे दिन करे काम, एक खिन ले ना हर को नाम, एक खिन मात्र भी तू परमात्मा दा नाम नहीं जपदा, तेरे अंदर गुण केड़ा हो।

गोविंद हम ऐसे अपराधी, ऐसे अपराधी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने कि हे मेरे मालिक असी किहो जिहे अपराधी आ, साडे अंदर किन्ने कु औगण ने। भाई साहब जी ने इस पौड़ी अंदर 22 औगणा का जिक्र किया, कहिंदे ने 22 औगण सब तो वड्डे मेरे विच ने। साध संगत ध्यान करना,

बिन सिमरन भय कूकर काम साकत बेसुआ पूत ना नाम बिना सिमरन दे आख्या मनुख इस तरह है जिस तरह वेशिया दा पुत्र है ते अपने प्यो दा नां नहीं जानदा उनू कोई पुछ लवे भाई तेरे पिता दा की नाम है तां की दसेगा आख्या बिना नाम तो मनुख भी ऐसा ही है बिन सिमरन

सब तो पहला रागां विच श्री राग जो के इस समय ही गाया जाता है। बाणी विच इसनु रागां विच सिर मोर मन्या है, रागां विच श्री राग है। ते शब्द भी श्री राग दा पहला शब्द है, मोती ता मंदर उसरे रतनी ता होए जड़ाव, कस्तूर कुंगु अगर चंदन लीप आवे चाव, मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे ना। शब्द श्री गुरु नानक देव पातशाह जी दा उच्चारण कीता होया। राहव दी तुक है, हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देख्या अवर ना ही था। मैं एक बेनती करूंगा बच्चियां नू, जरा इना दी गल्लां दी आवाज जे इधर आएगी ता मन खिंडदा है। फिर सब तो पहला जपताल 10 मात्रा ते अंतरा 10 मात्रे दा ही सुलफाक विच, सुलफाक चलंत लय विच गाया जांदा है। अंतराय दा चलंत लय विच है ते अस्थाई ठा विच है।